शब्दों का एक शहर बना दो, खोज लो खुद की सड़कों को। मौसम में कुछ खास ठंड है, आज डर और शक को जला दो। जाना हमें बहुत दूर, रास्ते जल्द ही कटेंगे। जिंदगी इसी शहर में, चलना है साथ चलेंगे।